0: ठंड, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
0: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: म्यूजिकल दिल लगी का जारी है सफर, जहां आपकी हम घड़ी ने बढ़ा दी है अपनी गति। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का सही जवाब और उससे जुड़ी कुछ और जानकारी भी, जो आप सबने इतनी मेहनत से ढूंढी है और हमें लिखकर भेजी भी है। तो जनाब बिल्कुल सही हैं आप। भारत रत्न से सम्मानित, दुनिया भर में मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के हैं वो सुर, जिन्हें आप आकाशवाणी पर सुबह सुबह बजने वाली मंगल ध्वनि में सुनते हैं। एक खास रिकॉर्डिंग के जरिए उस्ताद जी ने साल 1957 में HMV के माध्यम से एक खास LP यानी लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड तैयार किया था, जिसमें सुबह और शाम के समय गाए जाने वाले अलग अलग 7 रागों को 3-3 मिनट की अवधि के लिए बजाया गया और फिर कुल 14 रागों का यही संग्रह आगे चलकर आकाशवाणी के साथ साथ हम सब के दिन की शुरुआत बन गई। और यही वजह रही कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक भी कहा गया। और चलिए अब जान लेते हैं वो सभी नाम जिन्होंने लिखकर भेजा बिल्कुल यही और सही जवाब आज के सवाल का। तो भाई सबसे पहला जो जवाब आ जाया वो आया राजेश कुमार जी का, जिनसे अभी हम कुछ ही देर में फोन लाइन पर बातें करेंगे। वो कर रहे हैं थोड़ा सा इंतजार। उससे पहले डॉक्टर मंजुषा उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, नवीन भाटिया मोतीनगर नई दिल्ली से ही, आशीष गायकर मुंबई से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा यूपी से, अनु बड़जात्या मुंबई से, अशोक कुमार शर्मा अलवर राजस्थान से, हेमा गुरुग्राम से, काव्या कन्नालवर महाराष्ट्र से, संतोष सक्सेना मुंबई से, अंशु भार्गव, प्रकाश गोगिया, इन्होंने भी दिया बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आज के सवाल का। और देखिए राजा जी ने भी भेज दिया आपसे कुछ ही देर पहले बिल्कुल सही जवाब। जयप्रकाश दुबे साहब ने भी भेज दिया और इसके साथ ही महेश अग्रवाल जी ने भी भेज दिया आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और भी कई जवाब आए हैं, सुदर्शन मुखी जी हैं जिनमें शामिल, अमरजीत सिंह शामिल हैं, देवदत्त परसौलिया शामिल हैं, और कौन शामिल है, मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से। और अब देखिए ज्यादा इंतजार मैं राजेश जी को नहीं करवा सकती हूँ, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया
0: जी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैसे दिन की शुरुआत करते हैं, आकाशवाणी उसमें कितना हिस्सेदार रहता है?
1: मैं 3 चीजें करता हूँ
0: जी।
1: सबसे पहले रेडियो खोलता हूँ, फिर मोबाइल चार्ज के लगाता हूँ।
0: अच्छा।
1: फिर ये हेडफोन चार्ज के लगाता हूँ।
0: वाह क्या बात है
1: उठते ही
0: कहीं कोई कमी ना रह जाए, है ना
1: जी। और मेरे को शुरू से ही आदत है समाचार सुनने की
0: जी।
1: अच्छा। मैं रेडियो पे बहुत विश्वास करता हूँ, इसी का ही समाचार सुनता आया हूँ बचपन से।
0: अच्छा, तो सिर्फ समाचार सुनते हैं या गानों के भी शौकीन है और हमें भी सुनना पसंद करते हैं?
1: गाने वाले फिल्में वगैरह मतलब इतना शौक नहीं रहा, पहले था शुरू में, अब
0: अच्छा
1: नहीं है।
0: तो मतलब
1: लेकिन 10 बजे तक मैं सुनता हूँ, 10 बजे तक मैं रेडियो सुनता हूँ।
0: अच्छा ओके।
1: और एक्सरसाइज भी करता रहता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी दिन की शुरुआत आप करते हैं, सभी को इसी तरह से दिन की शुरुआत करनी चाहिए सर। और बताइए कुछ अपने बारे में कि आकाशवाणी सुनकर। और
1: मैं आकाशवाणी रेडियो बचपन से सुनता था
0: जी,
1: 75 से लगा लीजिए मैं लगातार सुन रहा हूँ। हमारे घर में रेडियो आया था तो पिताजी हमारे बरामदे में लगा के सुनते थे हम सारे।

0: शाम को एक अच्छे रात को,
1: क्या बात है?
0: मैं 11 बजे तक सुनता था।
1: अरे वाह,
0: समाचार सुनने के बाद फिर मैं सोने जाता था, उसी दौरान मैं पढ़ता भी रहता था।
1: वाह सर,
0: पढ़ाई भी चलती रहती थी।
1: बिल्कुल अप टू डेट रहते होंगे आप तो। गानों के आप बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है आपने बताया, लेकिन फिर भी कोई तो जी।
0: नहीं, गानों के शौकीन है, पुराने गानों के बहुत शौकीन हूँ मैं।
1: अच्छा,
0: पुराने गाने एफएम गोल्ड इसीलिए चुना है, उसमें पुराने ही गाने आते हैं।
1: तो बताइए फिर कोई एक ऐसा गाना जिसे आप बहुत पसंद करते हो, जिसे हम आपके लिए प्ले कर सकते
0: हैं। मैं क्या, मेरे जितने भी जानने वाले हैं सभी को पता है कि मेरे को एक ही गाना पसंद है, वक्त फिल्म का है।
1: अच्छा,
0: मेरी जोहर जबी।
1: अरे वाह सर, बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है, तो सुनेंगे हम मन्ना डे साहब की आवाज में जरूर कुछ ही पलों में, लेकिन उससे पहले आपकी आवाज में सुनना तो बनता है सर, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए।
0: नहीं मैडम, मुझे आता नहीं है
1: सर, थोड़ा सा, दो लाइनें तो बनती हैं सर।
0: ठीक है
1: जी।
0: मेरी जोर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवान, कुर्बान मेरी जान, मेरी जान।
1: अरे वाह सर, इतना अच्छा तो आप गाते हैं, गाते रहिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, अगली बार हम फिर आपसे थोड़ा और लंबा सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और
0: धन्यवाद मैडम, आकाशवाणी का भी धन्यवाद, सभी रेडियो श्रोताओं का धन्यवाद
1: जी,
0: सब लोगों का धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच सर। तो ये थे राजेश जी, और बड़े ही खूबसूरत गाने की इन्होंने फरमाइश हमसे की, और साथ ही उसे गुनगुनाया भी। सुनेंगे ये गाना, लेकिन उससे पहले मुझे है आपको याद दिलाना कि आप जाएंगे कहीं नहीं, इस गाने के उस पार आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार देश और दुनिया से जुड़े, और ठीक 10:30 बजे फिर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि दिल का मेल बॉक्स खुला रहेगा और मैं यानी नाज करूंगी आपका इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपये भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है।

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: questioned him about China's relationship with Iran and whether Beijing had provided support during recent hostilities. The IMD has issued an orange alert for thunderstorm conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gujarat, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Andhra Pradesh and Telangana for today. The IMD has predicted heavy to very heavy rainfall over Kerala and Mahe for the next 2 to 3 days. In badminton, Indian pair of Rohan Kapoor and Ruthvika Shivani Gadde won against Taiwan's Hu Ling Fang and Yang Po Xuan today in mixed doubles round of 32. Today in men's singles, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hong Yang. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 international to clinch the series 2-1 at the County Ground Taunton in England last night. India set a target of 181 runs against England. In reply, England scored 184 for 4 in 18.3 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। तिब्बत में चीन के नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के निर्धारण संबंधी विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और लोगों को संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि चीन ने मौजूदा क्षेत्रीय संकट के दौरान ईरान को सैन्य सहायता दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास चीन में बने कुछ सैन्य उपकरण जरूर हैं, लेकिन हाल के संघर्ष में चीन की किसी भी ऐसी कार्रवाई का पता

0: नहीं चला है जिससे सैन्य संतुलन प्रभावित हुआ हो। श्री रूबियो ने चीन से अपील की कि वो संयुक्त राष्ट्र में अधिक रचनात्मक भूमिका निभाए, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री यातायात सुचारू रखने के प्रयासों में। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य नीति का मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक हथियारों की क्षमता को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। श्री रूबियो ने दावा किया कि हाल के अमेरिकी सैन्य अभियानों से ईरान की सैन्य क्षमता में काफी गिरावट आई है। ईरान की नौसेना अब काफी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी कार्रवाई में ईरान के ड्रोन उत्पादन ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि कुवैत और बहरीन की ओर दागी गई ईरान की मिसाइलें या तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई या उन्हें बीच में ही रोक लिया गया। सेना ने यह भी कहा कि इसके बदले में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमान के अनुसार ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट क्वेश्म द्वीप पर स्थित ईरानी सैन्य जमीनी नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाकर किए गए। इस द्वीप पर एक डिसेलिनेशन संयंत्र भी है। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी सेना ने कहा कि कुवैत की ओर दागी गई दो मिसाइलें रास्ते में ही नष्ट हो गईं, जबकि बहरीन की ओर दागी गई मिसाइलों को अमरीका और बहरीन की सेनाओं ने बीच में ही रोक लिया। स्थानीय मीडिया खबरों के अनुसार ये घटनाक्रम तब सामने आए जब ईरान ने युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने के संबंध में मध्यस्थों से बातचीत बंद कर दी। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि बातचीत जारी है। एक अन्य घटनाक्रम में अमरीका की सेना ने कहा कि उसने अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे तेल टैंकर को रोकने के लिए एक मिसाइल दागी। सेना ने कहा कि नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में रोका गया ये सातवां जहाज था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है जिसके अंतर्गत विदेश विभाग को यह निर्धारित करना होगा कि क्या चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ नरसंहार या मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं। इससे मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर चीन पर कांग्रेस का दबाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यूजर्सी के रिपब्लिकन सांसद क्रिस स्मिथ और न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद टॉम स्वोजी ने कल तिब्बत अत्याचार निर्धारण अधिनियम पेश किया। इसके अंतर्गत विदेश मंत्री को अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों का आकलन करते हुए कांग्रेस को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस विधेयक में तिब्बत के बौद्ध धर्म के चीन के अनुसार और तिब्बती भाषा और संस्कृति के दमन के उद्देश्य से चीन की सरकार की कार्रवाइयों की समीक्षा का भी प्रावधान है। रिपोर्ट में विदेश विभाग के निष्कर्षों और तीसरे पक्ष के विश्लेषणों का उपयोग किया जाएगा और प्रतिबंधों, वीजा प्रतिबंधों और राजनयिक उपायों सहित अमेरिका की संभावित प्रतिक्रियाओं की सिफारिश की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के तहत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के तहत अब प्रथम वर्ष के 100 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 7,500 श्रीलंकाई रूपये की सहायता दी जाएगी। ये सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान प्रांत में खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए अभियानों में 17 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के अनुसार पिछले महीने क्वेटा के निकट हुई ट्रेन बम विस्फोट की घटना के बाद मस्तुंग, नुश्की, जेहरी, खुजदार और केच जिलों में ये अभियान चलाए गए। इस विस्फोट की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। आज विश्व साइकिल दिवस है। ये विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184

नमस्कार, ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूं आपसे बातें करने और आपको आपकी फरमाइश के गीत सुनाने भी। आप क्या करेंगे ये भी याद दिला दूं आपको। fmgoldair@gmail.com पर भेजेंगे अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और इसके साथ ही कुछ शेरो शायरी हो जाए तो बस बात ही बन जाए, है ना। व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं हमें, नंबर नोट कर लीजिए 9868687533। और दोस्तों, इसके साथ ही टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि मैं एक बार फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस, जिसे प्रोग्राम के बीच बीच में आप सुनते रहेंगे और मुझे बताएंगे कि ये म्यूजिक पीस किस सॉन्ग का प्रिल्यूड यानी शुरुआती हिस्सा है। तो जरा ध्यान से सुनिए,

तो अगर पहचान लिया है गाना तो टाइम बिल्कुल नहीं है गवाना, जल्दी से लिख भेजिए गीत के बोल और फिलहाल एंजॉय कीजिए ये मस्ती भरा गीत जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे जी की ओर से। शाहजी नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से आई है ये फरमाइश।

जी बिल्कुल सही बात है, जीवन चलने का नाम है और हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपके ईमेल और मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ये मैसेज आया है राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया और चारू जटोलिया जी की ओर से, दिल्ली नागलोई से ये आया है मैसेज, और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश जिसे हम पूरा करने की कोशिश जरूर जरूर करेंगे। एक और मैसेज आया है, लिखा है कि नाज आई तो कलियां मुस्कुराने लगी, हवाओं में तेरे आने का पैगाम आने लगा, पेड़ों ने ओढ़ ली हरियाली की चादर, गोया जमीन ने दुल्हन का लिबास पहन लिया।

पतझड़ में जो दरख्त उदास थे, नाज ने आकर सबको हरा भरा कर दिया। सूखी टहनियों पे भी फूल खिल जाते हैं, नाज जब आती है तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। उफ, फिलहाल तो मैं पिघल गई हूँ अनुजी, आपकी इस बात से। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, मुंबई से लिखकर भेजा है। डियर नाज, प्योरली डेडिकेटेड टू यू, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटिफुल मैसेज। और भी लिखा है, पढ़े बिना रहा नहीं जा रहा मुझसे। चांद को देखूं तो तेरा चेहरा नजर आता है, तारों को देखूं तो तेरी हंसी सुनाई देती है। ये कैसा स्नेह है मुझको तुमसे, ये कैसा स्नेह यानी प्यार है मुझको तुमसे, हर चीज में सूरत तुम्हारी दिखाई देती है। कितने कमाल की बात है ना, न मेरी सूरत आपने देखी है, हालांकि मैंने तो आपकी देख ली है क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज मैं आपका पढ़ रही हूँ जिसमें आपकी प्रोफाइल पिक भी लगी हुई है और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं आप। और साथ ही लिखा है कि चांदनी रात है, तारों की बारात है, दिल का हर कोना आज तेरी यादों से आबाद है, काश तुम भी यहाँ होती मेरे साथ, ये चांद भी कहता कि इश्क लाजवाब है। लेकिन सवाल यह है कि दिन में आपको चांद कहाँ से नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, आपके जज्बात मैं अच्छे से समझ रही हूँ। और एक बड़ा सा थैंक यू बोल रही हूँ इस खूबसूरत से मैसेज के लिए। एक साइकिल पर भी आपने कविता लिखी है, लेकिन चूंकि मुझे और भी मैसेजेस शामिल करने हैं तो इस बार के लिए सॉरी। और चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं। लगातार भाई मेरी उम्मीद से बहुत अलग हैं आप लोग, सच में मुझे लगा था कि आज का म्यूजिक पीस जो मैंने आपके लिए प्ले किया उसे पहचानने में थोड़ा तो वक्त लगाएंगे आप, शायद हो सकता है कि कुछ ही जवाब आए तो मुझे मेहनत कम करनी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार आप लोग जवाब भेज रहे हैं और ये भी बता दूं कि बिल्कुल सही जवाब भेज रहे हैं आप सभी। चलिए इसी बात पर एक बार और वो म्यूजिक पीस सुना देती हूँ आपको और फिर करूंगी बातें।

तो यही था वो म्यूजिक पीस जिसे आपने पहचानना है और लिख भेजना है गाने के बोल। और चलिए इसी के साथ अगला मैसेज भी शामिल कर लेते हैं जो कि आया है सीधा चंडीगढ़ से। सतीश अनीजा जी, बिमला अनीजा जी के साथ इन्होंने

तो यही था वो म्यूजिक पीस जिसे आपने पहचानना है और लिख भेजना है गाने के बोल। और चलिए इसी के साथ अगला मैसेज भी शामिल कर लेते हैं जो कि आया है सीधा चंडीगढ़ से। सतीश अनीजा जी, बिमला अनीजा जी के साथ इन्होंने बड़ी ही खूबसूरत कविता एक बार फिर से लिखकर भेज दी है जिसे मुझे पढ़ना ही होगा। लिखते हैं, तरन्नुम भी असर क्यों ना दिखाए, दिल में बजे जो साज, गोल्ड की बात करते हो वो तो हो चुका परवाज, गूंजेंगे गूंजेंगे अब नगमे, महकेगी अब दिलकश सी आवाज, नहीं नहीं भाई कोई और नहीं, वो तो मेरी बहना है नाज, काबिले तारीफ पेशकश और दिलकश सा है अंदाज, सबको मिले जो भागीदारी, नहीं होता कभी कोई नाराज। वाह रे प्रसार भारती वाह, क्या दी है हमें दिलकश सौगात, मनोरंजन करे गम भगाए और शिद्दत से सुने हमारी बात, ऐप की बदौलत अब तो बन चुका हर जगह गोल्ड सरताज, ये बगिया तो महकेगी ही जिसे संभाले बहना नाज, आपकी मेहनत और निष्ठा से मिली खुशियों की लहर, नाज बहना आप खुश रहो ये भाई दुआ करे तीनों पहर। उफ भाई, देखिए आप ना मेरे इमोशंस को चैलेंज कर रहे हैं। एक बात बताइए, ऑन एयर मैं रोती हुई अच्छी लगूंगी क्या आपको? चाहते हैं आप कि मैं रो दूं, कैसी लगूंगी सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, मैंने संभाल लिए हैं अपने आंसू और पढ़ रही हूं मैं आपके मैसेजेस, लेकिन जो प्यार आप भर भर कर भेज रहे हैं उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया कहूं कम ही रहेगा, ठीक है ना। और अगला मैसेज आया है सत प्रकाश सनोठिया जी की ओर से, रोहिणी से आया है, सवाल का जवाब लिख भेजा है जो कि बिल्कुल सही है और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश। लेकिन फिलहाल मैं ढूंढ रही हूं एक और कोई ऐसा मैसेज जिसमें लिखी हो कोई बढ़िया सी बात, कोई अच्छा सा शेर, कोई शायरी, जो कि मुझे अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगला सॉन्ग सुन लेते हैं उसके बाद ट्राई करेंगे, है ना। और ये अगला गाना जो आप सुनने वाले हैं बड़ा ही खूबसूरत गाना है ये, सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, कृष्णा पार्क दिल्ली से आई है फरमाइश, पंखा रोड जनकपुर से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबरॉय ने फरमाइश भेजी है जनाब।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.

पिछले प्रोग्राम में आपने मेरा शीशाए दिल तोड़ दिया। उफ, झालमुड़ी खाकर आपने मेरा शेर तो पढ़ा लेकिन मेरा नाम छोड़ दिया। लेकिन मुझे इस बात पर अचरज कि आपको कैसे पता कि मैंने आज झालमुड़ी खाई। लेकिन कमाल का शेर लिखा और उम्मीद है कि अब आपकी नाराजगी भी दूर हो गई होगी। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ ये मैसेज आया है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश। लेकिन आज की धुन नहीं पहचानी आपने। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है। तो चलिए एक बार और सुना दो धुन आपको, उसके बाद बात करते हैं।

तो कोशिश करते रहिए और इसी तरह मैसेज भेजते रहिए जैसे कि आप सभी भेज रहे हैं अभी। तो अगला मैसेज जल्दी से शामिल कर रही हूँ। कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने भेजा है भटीपुरा महोबा से, लिख रहे हैं, दिल को सुकून रूह को आराम आ जाता है, दिल को सुकून रूह को आराम आ जाता है जब नाज जी की प्रस्तुति में दिल का मेल बॉक्स आ जाता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा शेर आपने लिखकर भेजा है। इसके साथ ही अगला मैसेज आ गया है गांधी चौक बाड़मेर से, आया है राजस्थान से। बबलेश पवार जी लिख रहे हैं कि नाज शेख साहिबा जी आदाब, मेरी प्यारी एफएम गोल्ड रेडियो के उस पुराने सुर में एक अलग ही अपनापन है। एफएम गोल्ड के मीठे गीतों में जैसे बीता हुआ बचपन है, सपनों की उन लहरों पर गांठ लगाती पुरानी धुनें, मन को छू जाते हैं जो गीत तो बार बार हम फिर से सुने, दूर कहीं किसी कोने से आरजे नाज की वो प्यारी आवाज, एफएम गोल्ड और गीतों का आज भी सबसे अलग है साज, पुरानी यादों की महक लिए हवा में तैरती ये मधुर तान, रेडियो पर बजता हर एक गीत जैसे हो कोई भूला हुआ वरदान। क्या बात है, बहुत ही अच्छी कविता, अच्छी बात आपने लिखकर भेजी है। डैनी पवार और मनीष पवार भी इनके साथ शामिल हैं और अभी भी कुछ लिख रहे हैं, माफ कीजिएगा, आगे बढ़ना होगा मुझे क्योंकि और मैसेजेस भी शामिल करने हैं। तो अगला मैसेज हम शामिल चलिए कर लेते हैं। सतप्रकाश सनोठिया जी ने लिखकर भेजा है कि बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते, अनजान मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, मिलने की खुशी दें या ना दें मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और भी लिखा है कि सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो लेकिन धूल हो ही जाती है और इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए मुझसे भी भूल हो सकती है या हो रही है क्योंकि मैं चाह कर भी वो सभी नाम शामिल नहीं कर पाती हूँ, वो सभी मैसेजेस, वो सभी ईमेल शामिल नहीं कर पाती हूँ जो मुझे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज शामिल कर पाऊँ। और चूँकि देखिए घड़ी बहुत तेज़ी से भाग रही है तो मैं जल्दी से कुछ और मैसेजेस या ईमेल शामिल कर लेती हूँ कार्यक्रम में। सईद अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि ऐ मेरी जमी के चांद सितारों, नाज आई है एफएम गोल्ड पर, दरिया ने भी मौजों को पुकारा है, श्रोतागण ने भर भर कर मैसेजेस और मेल नाज परवारे हैं, हम भी चुपके से कह देते हैं कि हम भी नाज की प्रस्तुतिकरण के दीवाने हैं, अब ये नाज पर छोड़ा है वो माने या ना माने हमें तो नाज है नाज पर। क्या बात है सर, कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। और ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से लिखा है ये मैसेज, सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बान अब्बासी के साथ परिवार के सभी सदस्य शामिल हैं।

इस ईमेल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी सुन रहे हैं आपको, क्या खूबसूरत अंदाज है, कोयल जैसी तेरी बोली, गुल है क्या गुल नाज है। ये लिखा है शमशुल कमर राही साहब ने गंज डुंडवारा से, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान के साथ, आपका भी शुक्रिया। और चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं। प्यारी दीदी नाज को, प्यारी दीदी नाज जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है, धन्यवाद। किसी भी सॉन्ग में आप हमें शामिल कर लीजिए, क्या बात है। और लिखा है कि पलट कर देख लेना जब सदा दिल की सुनाई दे, मेरी आवाज में शायद मेरा चेहरा दिखाई दे। आपका चेहरा तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि आपका ही है या आपके घर के किसी प्यारे से क्यूट से बच्चे का है, क्योंकि प्रोफाइल पिक में मुझे एक क्यूट सा बेबी नजर आ रहा है। लालगिरी गोस्वामी जी का ये ईमेल है, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हेमलता, हर्षित और खुशी गोस्वामी इनमें शामिल है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखिए समय बहुत कम बचा है, तो जल्दी से मैं आज की उस धुन के बारे में बात कर लेती हूँ और फिर मुझे वो नाम भी शामिल करने हैं जिन्होंने उस धुन को बिल्कुल सही पहचाना है। तो दोस्तों ये धुन एक बेहद खूबसूरत गीत का हिस्सा है जो कि साल 1975 में आई फिल्म गीत गाता चल से है। इसके संगीतकार और गीतकार दोनों ही थे दिग्गज रविंद्र जैन जी। आरती मुखर्जी की मीठी आवाज पर अदाकारी करते हुए आप देखते हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री सारिका जी को, जिनका आज यानी 3 जून को जन्मदिन भी है, और बतौर लीड एक्ट्रेस जिनके लिए ये फिल्म और ये गाना भी बहुत कुछ लेकर आया है। गाने की पिक्चराइजेशन एकदम सिंपल है और जो कि सारिका जी की सादगी भरी खूबसूरती पर एकदम फिट बैठी है। जानिए सारिका जी के जीवन और फिल्मी करियर से जुड़ी खास बातें आज दोपहर 1:10 पर हमारी खास पेशकश कलाकार बेमिसाल में। और फिलहाल जानिए वो सभी नाम जो आज की धुन के बने धुरंधर और लिखकर भेजा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो तुलसी मस्कीन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से, मधुबाला तिलंगपुर कोटला दिल्ली से, सज्जन कुमार जांगड़ा हिसार हरियाणा से, भगवती नई दिल्ली से, संजय ढींगिया बागपत से, धर्मेंद्र छीपा राजस्थान से और राजू मिगलानी हांसी से, आफताब अंसारी यूपी गंज डुंडवारा से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा, फारूक अली खान गुन्नौर यूपी से। और देखिए अभी भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें शामिल है मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, और साथ ही मस्कीन दादा भी शामिल हैं, लिख रहे हैं कि जवाब दे दिया है और कई मैसेज छूट जाएंगे, हम तो फिर रह ही जाएंगे ना, ऐसा ना करें, रेगुलर कनेक्ट हैं हम। तो देखिए आपका नाम भी मैंने शामिल कर लिया है। और दोस्तों अब मुझे जल्दी से आपको सुनाना होगा वो सॉन्ग, क्योंकि समय अब मेरे पास बहुत ही कम बचा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना,

0: और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपये भेजना शुरू करेंगे। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका के निकेशन द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव के बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India from today. During the visit, she will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi to review the full spectrum of India-Venezuela relations. The two countries will explore avenues for cooperation in key sectors including trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said Ms. Rodriguez will be accompanied by a high-level delegation including ministers of foreign affairs, economy and finance, science and technology.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation.

ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और जहां के स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त टाइम हुआ है 11:11 और 11 सेकंड्स भी। हैंड एज यू नो ऑलरेडी, ये समय है सैर सपाटे का, क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का। तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूं पूरी तरह से तैयार, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हां तो ध्यान से सुनिए, आज मैं करवाने वाली हूं आपको जन्नत की सैर। अरे अरे घबराइए मत, इस दुनिया के पार वाली जन्नत का वक्त नहीं आया है अभी। मैं तो बात कर रही हूं यहीं इसी धरती पर मौजूद जन्नत यानी स्वर्ग यानी हेवन की।

भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा केंद्र शासित प्रदेश जो हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है मौजूद और जिसे कहा जाता है ऊंचे दर्रों की भूमि। बस वहीं वहीं की सैर करेंगे आज। तो दोस्तों थाम लीजिए दिल और एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, क्योंकि जगह का नाम तो आप ही मुझे बताएंगे, वो भी इस सॉन्ग के शुरू होकर खत्म होने से पहले।

तो खत्म हुआ इंतजार और अब जान लीजिए कि किस जगह की तस्वीर से होने वाले हैं आप आज रूबरू मेरे यानी नाज के साथ। बिल्कुल सही गेस किया है आपने। किसने? अनु बरजात्या जी, कैप्टन आईसी शर्मा, कृष्ण कुमार गुप्ता और सुदर्शन मुखी जी ने। ये चार मैसेजेस आए बिल्कुल सही। दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर और उत्तर में काराकोरम दर्रे के पास शिनजियांग से घिरे लद्दाख की बात करेंगे आज और सैर भी करेंगे, साथ ही लेंगे इस जून की गर्मी में सर्दी का एहसास, क्योंकि लगभग पूरे साल ये जगह बेहद ठंडी और शुष्क रहती है और इसकी वजह ये है कि लद्दाख असल में एक बेहद ऊंचा और ठंडा मरुस्थल यानी रेगिस्तान है, जहां आप कभी भी चले जाइए ठंड आपको मिलेगी ही। फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि मई से सितंबर के बीच अगर आप लद्दाख जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस दौरान यहाँ बाकी जगहों के मुकाबले तापमान बहुत कम रहता है। जहां दूसरी जगह यानी मैदानी इलाकों में 35 डिग्री से ऊपर आपको टेम्परेचर मिलता है, तो लद्दाख में आपको टेम्परेचर मिलेगा 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। हालांकि रात में ये तापमान 5 डिग्री तक भी गिर सकता है। मॉनसून यानी जुलाई और अगस्त में अगर आप जाते हैं लद्दाख तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। और अब जरा मसला सर्दियों का भी सुन लीजिए। तो जनाब, -10 डिग्री से -30 डिग्रीज, मतलब समझ रहे हैं आप कितनी जबरदस्त ठंड पड़ती होगी। यहाँ भारी बर्फबारी यहाँ पर होती है सर्दियों के दौरान, तो इस वक्त यानी अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ का मौसम झेलने की ताकत और हिम्मत अगर आप में है तो पूरी तैयारी से जाइएगा लद्दाख। और फिलहाल सुनिएगा ये अगला ट्रैक, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लद्दाख पहुंचना कैसे है।

और देखिए, लद्दाख की तस्वीर को देखना है अगर जरा करीब से, तो सीधा रूट बनेगा आपका पहले मनाली, फिर वहां से जीस्पा, फिर सरचू होते हुए उपशी और फिर लेह पहुंचेंगे आप, जो लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है। दूरी आप तय करेंगे मनाली से यहां तक लगभग 428 किलोमीटर, जिसे तय करने में लगते हैं आमतौर पर 2 दिन। जून की शुरुआत यानी अभी से लेकर अक्टूबर तक यह हाईवे आपके लिए खुला रहता है। इसके अलावा श्रीनगर से अगर आपकी लद्दाख जाने की इच्छा है तो रूट आप पकड़ेंगे श्रीनगर से सोनमर्ग, फिर द्रास, फिर कारगिल और फिर आखिर में लेह आप पहुंच जाएंगे। 418 किलोमीटर का ये सफर, जिसे आप 2 दिनों में ही पूरा कर पाएंगे, और ये रूट आपके लिए मई से नवंबर तक खुला रहता है। बाय एयर आने के लिए आप लैंड करेंगे लेह में मौजूद कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, जो लद्दाख का एकमात्र एयरपोर्ट है और जिसकी कनेक्टिविटी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ के साथ साथ जम्मू और श्रीनगर से एकदम सीधी है। दिल्ली से फ्लाइट लेंगे तो मात्र 1.5 घंटे में आप लेह लैंड कर जाएंगे। और फिर क्या करेंगे लद्दाख पहुंचने के बाद, बताऊंगी आपको इस अगले गाने को सुनने और एंजॉय करने के बाद।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी नाज के साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और आज जहां की सैर आप मेरे साथ कर रहे हैं, उस जगह का नाम है लद्दाख। भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, और इसी के साथ ये भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा था। सिंधु यहाँ की मुख्य नदी है और राजधानी यहाँ की लेह है, जहाँ एंट्री लेने के साथ ही आपको नजर आने लगती हैं बर्फ से ढकी ऊंचे पहाड़ों की ऊंची चोटियां, जो पल पल अपना रंग बदलती रहती हैं। एक ऊंचे

रेगिस्तान के तौर पर लद्दाख को जाना जाता है, क्योंकि हिमालय यहाँ पर एक छाया क्षेत्र सा बना देता है जो आमतौर पर मानसूनी बादलों को गुजरने नहीं देता। इसके अलावा मठों और स्तूपों से सजे लद्दाख में और यहाँ के लोगों में भी तिब्बतियन झलक आपको साफ नजर आती है, जो यकीनन आपको खूब पसंद भी आएगी।

बर्फ से ढके पहाड़, साफ झीलें और ऊबड़ खाबड़ जमीन जहां पर आपको मिलेगी, लिहाजा रोमांच की यहां पर कोई कमी नहीं है। क्या कुछ है यहां लद्दाख में एक्सप्लोर करने के लिए, उस पर करेंगे बात, लेकिन पहले ये ट्रैक सुनेंगे और फिर जल्दी से वापस आएंगे।

और अब बात उन लोकेशंस की जो लद्दाख की खूबसूरती को बयां करती हैं। तो यहाँ की राजधानी और सबसे बड़े शहर लेह जब आप पहुंचेंगे तो यहीं की पहाड़ी पर मौजूद सफेद गुंबद वाले शांति स्तूप जरूर जाइएगा, क्योंकि यहां से आपको नजर आएगा एक तो पूरा लेह शहर और खूबसूरत सनसेट की तो बात ही कुछ और है। इसके बाद आप होकर आइए लेह पैलेस, जो 17वीं शताब्दी में बना एक शाही महल है जो तिब्बतियन आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल भी है। 9 मंजिला ऊंची ये इमारत कुछ कुछ पोतोला पैलेस जैसी दिखती है, जो कि तिब्बत के ल्हासा में है। इसके बाद मैग्नेटिक हिल, एक

अनोखी जगह है जो कि लेह से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस मैग्नेटिक हिल की एक खासियत आपको बताऊं, यहां मिलेगी आपको एक अनोखी ग्रेविटी या एक तरह का खिंचाव भी आप इसे कह सकते हैं, जिसके चलते बंद गाड़ियां भी अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, है ना कमाल। और भाई कमाल तो ये अगला गाना भी है जिसे सुनना और एंजॉय करना बनता ही बनता है।

और भाई लद्दाख आए हैं तो यहाँ की मैजिकल और मशहूर झीलों से तो रूबरू होना बनता ही है। पैंगोंग त्सो, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है और लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, आपको यहाँ लद्दाख में मिलेगी। जिसकी एक और खासियत यह है कि ये झील दिन के अलग अलग समय पर अपना रंग बदलती है। नीला, हरा और ग्रे रंग आप इस झील की तस्वीर में देखते हैं। और इसके बाद यहाँ जिक्र जरूर करना होगा त्सो मोरीरी का भी, जो कि चांगथांग इलाके में मौजूद एक बेहद शांत और खूबसूरत मीठे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों और वन्य जीवों को देखने के लिए ये एक बेहतरीन साइट है। झीलों के बाद लद्दाख में मौजूद खूबसूरत वैलीज यानी घाटियों की भी

चलिए अब बात कर लेते हैं। तो जनाब, नुब्रा वैली आपको जरूर जाना है, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अपने ठंडे रेगिस्तान, सफेद रेत के टीलों और दो कुबड़ वाले ऊंटों की सवारी के लिए ये जगह दुनिया भर में मशहूर है। और यहाँ पहुंचने के लिए आपको खारदुंग ला दर्रे से होकर गुजरना होगा, जो कि सी लेवल से लगभग 17,582 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक है। और यहां से नजर आने वाली बर्फीली चोटियों का नजारा कुछ अलग ही है। वैसे हलक तो कुछ ये अगला गाना भी है, चाहे जितनी ही सदियां क्यों ना बीत जाए, ये गाना हमारा फेवरेट था, है और हमेशा रहेगा।

0: सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है।

0: दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
0: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: तस्वीर सुन रहे हैं आप, जहां खूबसूरत लद्दाख की सैर पर निकले हैं मेरे यानी नाज के साथ, और जहां अब मैं आपको लेकर चल रही हूं थिक से मठ, जो लेह से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। 12 मंजिल आप इस मठ में देखते हैं, जो अपनी विशाल मैत्रेय बुद्ध यानी भविष्य के बुद्ध की 49 फीट ऊंची मूर्ति के लिए जाना जाता है। इसके बाद बारी हेमिस मठ की है, जो लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है, और यहां हर साल जून या जुलाई के महीने में मशहूर हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां रंग बिरंगे मुखौटों के साथ चैमन डांस का आयोजन होता है। और वाकई ये फेस्टिवल देखने लायक होता है हर तरह से। बर्फ और पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी के बाद जो आपको यहां सबसे ज्यादा नजर आएगी वो है भारतीय सेना। और भारतीय सेना की इतनी ज्यादा तैनाती के पीछे कई वजहें हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो कि चीन और पाकिस्तान से मिलती हैं, उसके मद्देनजर नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ी वजह है, और इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का ही हिस्सा है, जहां सेना की मजबूती बहुत ही अहम है। एक ऐसा इलाका जहां टेम्परेचर -30 डिग्री तक जाता है, वहां हमारे जवान पूरी मुस्तैदी और चुस्ती के साथ हमारी रक्षा कर रहे हैं। और भारतीय सेना के इसी शौर्य को अगर आप करीब से महसूस करना चाहते हैं तो जरूर सैर कीजिए हॉल ऑफ फेम म्यूजियम की, जो लेह के पास ही मौजूद है और जिसे भारतीय सेना द्वारा ही संचालित किया जाता है। भारत पाकिस्तान युद्धों की वीर गाथाएं आप यहां करीब से जानेंगे और सुनेंगे भी, साथ ही सेना के हथियार और किस तरह से हमारे जवान वहां सियाचिन में डटे रहते हैं, इसकी तस्वीर आप यहां पर देखेंगे। और हाँ, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा शाम के समय यहाँ होने वाला एकदम खास लाइट एंड साउंड शो। और इसके अलावा द्रास में मौजूद कारगिल वॉर मेमोरियल भी आपको जरूर जाना चाहिए और जाननी चाहिए 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय वीरों की कहानी। फिलहाल सुनिए ये अगला ट्रैक, और इसके बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे लद्दाख के लजीज खाने की।

और अब जैसा था आपसे वादा, बताऊंगी आपको कि लद्दाख के लजीज स्वाद में आप क्या क्या चखेंगे, जो कि बहुत हद तक एक तिब्बतियन कुजीन से इंस्पायर्ड है। बेहद ठंडा इलाका है ये, तो जाहिर है कि सब कुछ गर्मा गर्म ही परोसा जाता है और पसंद भी किया जाता है। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में आप सबसे पहले चखेंगे यहाँ थुक्पा, जो लद्दाख का सबसे मशहूर आइटम है। गर्मा गर्म नूडल सूप है ये, जिसे सब्जियों और डिमांड के अनुसार मटन या चिकन के साथ भी तैयार किया जाता है। मोमोज वैसे तो आप कहीं भी चख सकते हैं, लेकिन लद्दाख के स्पेशल मोमोज उनसे काफी अलग होते हैं, टेस्ट में भी और बनाने के तरीके में भी। तो इन्हें टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद एक ट्रेडिशनल पास्ता यहाँ पर मिलता है, जिसे कहते हैं स्कायू, जो बिल्कुल फ्रेशली यहाँ पर तैयार किया जाता है और फिर सब्जियों या मटन के गाढ़े सूप में इसे पकाया जाता है। लोकल ब्रेड और स्नैक्स में आपको मिलेगी यहाँ की ट्रेडिशनल रोटी, जिसे कहा जाता है खम्बीर, और साथ ही भुने हुए जौ से बना सांपा भी आप यहाँ पर जरूर चखिए, जिसे नमकीन चाय या फिर छाछ के साथ मिलाकर खाया जाता है। और फिर छुरपे भी आप चख सकते हैं, जो याक के दूध से बना एक सूखा और कड़ा पनीर होता है, जिसे चबाने में जरूर आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ लद्दाख के सख्त मौसम के लिए भी आपको तैयार करेगा। ड्रिंक्स में आप एंजॉय करेंगे लद्दाख की मशहूर गुरगुर चाय, जिसे बटर टी भी कहते हैं। हरी चाय की पत्तियों, याक के मक्खन, दूध और नमक के साथ, जिसे एक खास लकड़ी के बर्तन में मथकर बनाया जाता है, और आपको पता है इसी बर्तन को कहते हैं गुरगुर। उम्मीद है मुझे कि मेरे यानी नाज के साथ लद्दाख का ये सफर आपने जरूर एंजॉय किया होगा। फिलहाल मुझे लेनी होगी आपसे विदा, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए टाटा, खुदा हाफिज और सायोनारा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस, आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहां ट्राइबल 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच

0: मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
3: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं। जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को, जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व तो है।
2: वेस्ट बंगाल्स फॉर्मर रूलिंग पार्टी द तृणमूल कांग्रेस इज इन टर्मोइल एंड ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट। एक्सपेल्ड टीएमसी एमएलए ऋतुब्रत बनर्जी क्लेम्स द सपोर्ट ऑफ नियरली 60 एमएलएज, अ नंबर दैट कुड डिसाइसिवली शिफ्ट कंट्रोल ऑफ द असेंबली। हिज फैक्शन हैज ऑलरेडी रिटन टू स्पीकर रथिंद्र बोस आस्किंग टू बी रिकग्नाइज एज द रियल टीएमसी। इन अ काउंटर मूव टीएमसी अनाउंस्ड शोभानंद देव चट्टोपाध्याय

0: 당근.
1: नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है घर आंगन, साथ ही आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ

चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज है विश्व साइकिल दिवस। यह हर साल 3 जून को मनाया जाता है। ये साइकिल के अनूठे लंबे समय तक चलने वाले बहुमुखी उपयोग को उजागर करता है। साइकिल चलाना सेहत के लिहाज से तो फायदेमंद है ही, इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है और मेंटल हेल्थ भी मजबूत होती है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये बहुत जरूरी है और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। साइकिल के हर पैडल के साथ एक नया सफर शुरू होता है जो हमें सिखलाता है जीवन भर स्वस्थ रहना और पर्यावरण को सुरक्षित करना। अब सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जहां पर्दे पर नूतन अपनी सहेलियों के साथ साइकिल चलाती नजर आ रही हैं।

इतने खूबसूरत नगमे हम ले आते हैं आपके लिए, और ये हमारा थोड़ा छोटा सफर नहीं है, ये हमारा 90 सालों का सफर है आपके साथ। रेडियो आपके हर पल में आपके साथ है। जी हाँ, आकाशवाणी आपका 90 सालों से हम सफर रहा है, और आज हम आपको बताएंगे कि आकाशवाणी में फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई।

10 जनवरी 1993 को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहली बार फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जी हां, दशकों से चली आ रही एक तरफा प्रसारण व्यवस्था को बदलते हुए श्रोताओं को केवल एक निष्क्रिय सुनने वाला नहीं रहने दिया गया, बल्कि उन्हें प्रसारण का एक जीवंत हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे पहले खत भेजे जाते थे, खत आकाशवाणी पहुंचते थे, श्रोताओं की पसंद के गीत बजाए जाते थे, श्रोताओं की पसंद सुनी जाती थी। जी हाँ, लेकिन वो तब उनका संवाद नहीं होता था। संवाद शुरू हुआ फोन इन कार्यक्रम से। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, तकनीक, शिक्षा, सरकारी नीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर श्रोता सीधे सवाल पूछने लगे, जिससे सूचना का आदान प्रदान हुआ और भी सटीक हो गया। ये सेवा विशेष रूप से इंटरैक्टिव और युवा केंद्रित प्रसारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस कदम ने रेडियो को अधिक पारदर्शी, संवादात्मक और सहभागी माध्यम में बदल दिया, ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें और जान सकें कि आपके मन में क्या है। और यही वादा हम हमेशा से करते आए हैं। आकाशवाणी 90 सालों से आपके साथ।

0: ताजमहल फिल्म की ये रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को तंबाकू के खतरनाक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर संजय सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर लोगों तक यह संदेश पहुंचाना बेहद जरूरी है कि तंबाकू केवल आदत नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है।
1: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि वर्ल्ड नो टोबैको डे क्यों मनाया जाता है।
2: वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों

0: और मौतों के प्रति जागरूक करना है। यह दिन लोगों को तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित भी करता है। इस बार की थीम है अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन।
1: तम्बाकू किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है?
0: तम्बाकू विभिन्न रूपों में यूज किया जाता है, जैसे कि तम्बाकू को सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, गुटखे के रूप में, खैनी, पान मसाला, हुक्का और ई सिगरेट जैसे कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें मौजूद निकोटिन व्यक्ति को लत का शिकार बना देता है।
1: तम्बाकू से शरीर को किस तरह का नुकसान होता है?
0: तम्बाकू शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। इससे मुंह और गले और फेफड़ों का कैंसर होता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, सांस की बीमारियां होती हैं, दांत और मसूड़ों की समस्याएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के बुरा असर होता है। ये सभी तम्बाकू के गंभीर दुष्प्रभाव हैं।
1: क्योंकि मैंने सुना था पहले कहते थे तम्बाकू से कैंसर हो सकता है, लेकिन अब हो गया है कि तम्बाकू से कैंसर होता ही है, तो 100% कैंसर हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: क्या तम्बाकू का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो खुद इसका सेवन नहीं करते?
0: जी हाँ, तम्बाकू का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इसका खुद सेवन नहीं करते हैं, जिसे हम सेकेंड हैंड स्मोक भी कहते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के आसपास मौजूद लोग भी धुएं के जरिए हानिकारक रसायनों के संपर्क में आते हैं और ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है।
1: यानी जो व्यक्ति खुद सिगरेट पी रहा है वो तो नुकसान है ही, आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदायक है।
0: बिल्कुल सही।
1: आजकल युवा पीढ़ी तेजी से तम्बाकू की ओर आकर्षित हो रही है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: युवाओं को समझना होगा कि तम्बाकू कोई स्टाइल या फैशन नहीं है, यह धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। स्वस्थ जीवन, खेल, योग और सकारात्मक गतिविधियां अपनाना ज्यादा बेहतर है।
1: जी हाँ, मतलब कहना चाहते हैं आप कि अगर खेल में या गेम जो पसंद है, कोई हॉबी उनकी है, अगर उसमें लग जाए तो स्मोकिंग और सिगरेट से और तम्बाकू से दूर हो सकते हैं वो लोग।
0: बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि स्मोकिंग या तम्बाकू को यूज करना इस तरह से है जैसे घुन लगना, आदमी के शरीर को अंदर अंदर ये बिल्कुल घुन की तरह खोखला कर देता है, बीमारियां घर कर लेती हैं, ये इसके दुष्प्रभाव हैं, इसलिए तम्बाकू को छोड़ना बहुत जरूरी है।
1: अगर कोई व्यक्ति तम्बाकू या सिगरेट छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए?
0: अगर कोई व्यक्ति तम्बाकू छोड़ना चाहता है, पहले तो उसको इच्छा शक्ति रखें कि वो तम्बाकू छोड़ना चाहता है, परिवार और दोस्तों का सहयोग लें, डॉक्टर या काउंसलर से सलाह लें, तनाव कम करने के लिए योग और व्यायाम करें, तम्बाकू की जगह हेल्दी आदतें अपनाएं और इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से एक्यूट लाइन सर्विसेज में भी वो फोन कर सकते हैं, जिसका टोल फ्री नंबर है 1800112356। इस टोल फ्री नंबर पे वो तम्बाकू छोड़ने के लिए सलाह दे सकते हैं।
1: आपने सही बताया, क्विट लाइन नंबर आपने बताया हमारे श्रोताओं को 1800112356, जिस पर सलाह लेकर ये टोबैको या सिगरेट छोड़ी जा सकती है। वर्ल्ड नो टोबैको डे का पखवाड़ा चल रहा है, जैसे कि आपने बताया था कि 31 मई से लेकर 14 जून तक ये गतिविधियां की जाएंगी, तो कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती है सर?
0: वर्ल्ड नो टोबैको डे फोर्टनाइट के पखवाड़े पे हम विभिन्न तरह की एक्टिविटीज करते हैं, उसमें स्कूलों और कॉलेजों में पोस्टर कंपटीशन कराना, जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे हेल्थ टॉक कराना, स्लोगन लेखन, रैली, शपथ ग्रहण, जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज में तम्बाकू के खिलाफ जागरूकता बढ़े। साथ ही एनफोर्समेंट ड्राइव भी की जाती है, जिसमें कोटपा 2003 और दिल्ली एक्ट 1996 के तहत कार्रवाई की जाती है।
1: अंत में श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं आपके श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आइए हम सब मिलकर तम्बाकू मुक्त जीवन का संकल्प लें। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के लिए तम्बाकू से दूरी बेहद जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई आज हमारे श्रोताओं को।
0: दोस्तों याद रखिए, तम्बाकू छोड़िए, जिंदगी को अपनाइए। इसी संदेश के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार सर।

0: औतन फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

और एफएम गोल्ड से चल रहा है हमारा कार्यक्रम घर आंगन, जो खास महिलाओं के लिए हम लेकर आते हैं। और अभी तंबाकू और सिगरेट सेहत के लिए कितना हानिकारक है, ये डॉक्टर संजय स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ने आपको बता ही दिया। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से जो लोग समझते हैं ना कि फैशन है, ये फैशन नहीं है बल्कि एक बुरी आदत है, और सकारात्मक गतिविधियों से इस पर काबू पाया जा सकता है, जिसमें से एक गतिविधि है योग। जी हाँ, योग के नियमित अभ्यास से शरीर, मन और विचारों में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये केवल वजन घटाने का साधन नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की एक पूरी प्रणाली है। और 21 जून को हम विश्व योग दिवस भी मनाएंगे, तो शुरुआत क्यों ना अभी से करें।

बहुत सारे फायदे हैं योग के। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है शरीर में। मांसपेशियां जो हमारी कैड़ी हो जाती है ना, उनका कड़ापन दूर होता है, शरीर का लचीलापन बढ़ता है। मांसपेशियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, शरीर की ताकत बढ़ती है, बेहतर मुद्रा हमें मिल पाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जिससे बैठने और खड़े होने का जो पोस्चर है वो सुधर जाता है। वजन तो नियंत्रित रहता ही, ये तो सबको ही पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो योग इसीलिए करते हैं कि उनका वजन ठीक रहे। सूर्य नमस्कार जैसे गतिशील आसन कैलोरी बर्न करने और मोटापा घटाने में मदद करते हैं, और सभी को पता है कि मोटापा ही सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। अगर आपने वजन को नियंत्रित कर लिया तो समझ लिए बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हो गए, पाचन क्रिया में सुधार आता है। वज्रासन और पवन मुक्तासन जैसे आसन गैस, कब्ज और अपच की समस्या को ठीक करते हैं, और मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, मानसिक फायदे हैं योग के। तनाव में कमी आती है, प्राणायाम और ध्यान करने से मानसिक तनाव और चिंता और डिप्रेशन भी कम होता है, बेहतर फोकस मिल पाता है, मन शांत रहता है, जिससे काम और पढ़ाई में एकाग्रता रहती है, नींद भी अच्छी आती है क्योंकि दिमाग की नसें शांत रहती हैं, अनिद्रा की बीमारी भी दूर होती है, दिल मजबूत होता है, फेफड़ों की क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है, प्राणायाम से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। क्या बताऊं, बहुत सारे फायदे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर भी है योग। अब देखिए ना, शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, तो क्यों नहीं हमारी महिलाएं घर के समय क्यों नहीं निकाल पा रही हैं। अब देखिए ना, अब आज का प्रोग्राम सुनकर आप लोगों को योग के लिए सोच लेना है कि बस हमें योग की शुरुआत कर देनी है। हमें नहीं सोचना कि आज की बात कल पे डालनी है, आज और अभी से हम योग की शुरुआत करेंगे।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत भाभी फिल्म से था। अब हम अपने श्रोताओं से इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी चर्चाएं कर रहे हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम में लेकर आते हैं हम बहुत सारी बातें। अब ये संवाद एक तरफा नहीं रहना चाहिए, आप भी हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। फिर से बता देते हैं fmgoldga@gmail.com। आप ईमेल हमें भेजिए प्रोग्राम में क्या चाहते हैं और प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अब हम बात करेंगे बिजली बचाने की। देखिए, पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आज के जो हालात है ना, उसमें पर्यावरण जो है वो बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को बचाया जाए। देखिए ना, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, ठंड है तो वो बहुत ज्यादा है, तो गर्मी जो इतनी ज्यादा हो रही है उसके लिए जरूरी है कि आप बिजली बचाइए, एक आदत बनाइए इसको। बिजली बचाना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली और आदत है। जब आप छोटी छोटी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो बिजली की बचत अपने आप होने लगती है। बिजली बचाने के लिए आप कुछ खास काम यानी खास कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत छोटी छोटी आते हैं। कमरा छोड़ते ही बटन बंद कर दें, यानी कि जो स्विच है वो बंद कर दें। कमरे से बाहर निकलते समय वहां की लाइट, पंखा और एसी बंद करने की आदत डालनी चाहिए। और इसके लिए दूसरे जो सदस्य हैं घर में उनको भी कहिए कि जहां से निकले अगर एक्स्ट्रा लाइट जल रही है तो उसे बंद कीजिए। अब फैंटम लोड पड़ता है जिसे आप गैजेट लगे छोड़ देते हैं, टीवी को रिमोट से बंद कर देते हैं, मोबाइल को चार्ज होने के बाद चार्जर को स्विच में लगा छोड़ देते हैं, या एसी को भी रिमोट से बंद कर देते हैं। ये स्विच ऑन रहने पर ये जो उपकरण है लगातार बिजली सोखते रहते हैं, इसलिए मेन स्विच बंद करना जरूरी है। चार्जर, लैपटॉप, टीवी, माइक्रोवेव के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए, खत्म होने के बाद जब आपका काम हो जाए तो मेन बोर्ड से स्विच बंद कर दीजिए। देखिए, इस बारे में हमें और भी बातें करेंगे, एक पहले गीत सुन लेते हैं।

शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बात चल रही थी बिजली बजाने की। जी हाँ, उसमें हमने आपको बता दिया कि स्विचेस बंद करने हैं और प्लग को सॉकेट से बाहर निकालना है। एक चीज और है, सूरज की रोशनी का सम्मान कीजिए, यानी नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कीजिए। दिन के समय कमरों की खिड़कियों के पर्दे खोल कर रखिए ताकि प्राकृतिक रोशनी अंदर आ सके और आपको बल्ब या जो रोशनी या आप लाइट जला दें उसकी जरूरत ही ना पड़े। धूप में कपड़े सुखाइए, वॉशिंग मशीन के ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करें। आजकल तो गर्मी है, धूप में कपड़े सूख जाते हैं। कपड़ों को धूप में सुखाने की जो आदत है ना, इससे बहुत बिजली बचती है। फिल्टर की सफाई कराइए, अगर एसी आपका है उसकी फिल्टर अगर साफ नहीं है तो भी वो बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं। और फ्रिज में बेवजह जो सामान टूस दिया जाता है ना, कि आप फ्रिज में भरे जा रहे हैं, उससे भी फ्रिज बहुत बिजली खाता है। इसलिए थोड़ी सी जगह खाली रखें ताकि उसमें अंदर एयर सर्कुलेशन यानी हवा घूमती रहे। गर्म खाना सीधे फ्रिज में नहीं रखना है, पहले बाहर ठंडा करना है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे आप बिजली बचा सकते हैं। अब गर्मी के दिनों में एसी को 24 डिग्री पर अगर आप चलाएंगे तो ये आदत बहुत अच्छी है, ताकि जो आप ये तापमान है मानव शरीर के लिए आरामदायक है और बिजली के बिल को भी नियंत्रित रखता है। रात को सोते समय टीवी एसी में स्लिप टाइमर लगाने की आदत डालें ताकि वो रात भर बेवजह चलते ना रहें। कई बार चला हुआ टीवी छोड़ देते हैं, अरे ऐसा नहीं है, आप आदत डालिए कि ये चीजें बंद करनी है। सोने से पहले सारा घर एक बार चेक करना है कि कोई बेवजह बिजली तो नहीं चल रही, कोई सॉकेट में कुछ प्लग तो नहीं लगा हुआ। ये आदतें ना सिर्फ घर का बजट सुधारेंगी बल्कि देश में ऊर्जा के संकट को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देंगी।

अनपढ़ फिल्म की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। और अब बात करेंगे गर्मी की, जो इतनी लू चल रही है ना, इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इन दिनों देश के ज्यादातर इलाकों में लू और प्रचंड गर्मी का असर है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कुछ हिस्सों में लू जैसी समस्याओं को लेकर रेड अलर्ट भी हो गया है। गर्मी के चलते बच्चे, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग, बीमार या पहले से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे लोगों को बहुत सजग रहने की जरूरत है। इस लापरवाही से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सूती कपड़े पहने, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें अगर आपको बाहर जाना है। गर्मी के चलते अगर थकान हो रही है तो कुछ लोग इसे सामान्य मानकर टाल देते हैं, जबकि ये शरीर के भीतर बिगड़े संतुलन का संकेत हो सकता है। गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे आसान तरीका है स्वयं के स्तर पर बचाव करें, लक्षणों को गंभीर होने से पहले ही रोक दें। अगर गर्मी के चलते चक्कर या बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो प्रभावित व्यक्ति को तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाना चाहिए। उसे ढीले कपड़े पहनाकर आराम दीजिए, गीले कपड़े लगाएं, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और पंखा भी किया जा सकता है उसके ऊपर। अगर आप सड़क पर हैं तो हाथ से पंखा कीजिए या किसी कागज से थोड़ा सा उसे साइड में ले जाइए। बेहोशी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इतनी गर्मी में अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप तेज गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए पानी की बोतल जरूर साथ रखें। चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल कम कर दें। ओआरएस और नींबू पानी को पीना भी लाभदायक हो सकता है।

बात चल रही थी गर्मी की। अब गर्मी है तो प्यास तो लगेगी ही, अब बार बार प्यास ना लगे और प्यास लगे तो भी पानी पीते रहे, मतलब ये ना सोचिए कि प्यास लगेगी, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना बहुत जरूरी है। धूप में बाहर निकलते समय सिर को ढक कर रखें, हल्के रंग और सूती कपड़े पहने, दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें, ORS, नींबू, पानी, छाछ ये सब इनको पीते रहें, इनका सेवन करते रहें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अब सावधानी अगर बरती जाएगी तो शरीर जो है आपका सुरक्षित रहेगा। तेज गर्मी जो लू चल रही है ना उसमें शरीर हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। मौसमी फल खाएं, ताजी सब्जियां लें, दही, छाछ, नारियल पानी का सेवन करना भी बहुत जरूरी है। अब किसी को कैसे हीट स्ट्रोक लगेगा ये ना आपको लगता है कई बार, अब हमारे घर की महिलाएं हैं, बच्चा बाहर से ट्यूशन पढ़ के आया, अब पता नहीं चलता कि क्या हुआ, अगर बच्चे को तेज सिर दर्द है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं या तेज बुखार है, एकदम से शरीर का तापमान बढ़ गया, वो हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब डिहाइड्रेशन कैसे होता है, मुंह सूखना, बार बार प्यास लगना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, अगर इसमें से कोई भी लक्षण है सबसे पहले तो ORS का घोल दिया जाए, नींबू पानी दिया जाए, उसके बाद अगर समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है। लेकिन लू से बचना बहुत जरूरी है, गर्मी में अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है।

इज्जत फिल्म के इस गीत में आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। अपना और अपनों का ध्यान रखें, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और इस कार्यक्रम से यानी घर आंगन से मुझे यानी राधा पाठक को दें इजाजत। नमस्कार।

0: हर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम

0: से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. More than 10 people lost their lives and several others are rescued after a fire broke out at a hotel in Malviyanagar, Delhi this morning. According to the Delhi Fire Services, 15 fire tenders rushed to the spot to douse the fire. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, Mr. Modi said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced that an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also expressed grief over the tragic loss of lives in the fire incident. In a social media post, Ms. Gupta said that immediately after receiving information about the incident, teams of Delhi Fire Services, Delhi Police, District Disaster Management Authority, CATS Ambulance Services and other emergency response agencies were mobilized and launched the rescue and relief operations. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
2: PM Janman Yojana ke तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है PVTG सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
1: वेस्ट बंगाल फॉर्मर रूलिंग पार्टी द तृणमूल कांग्रेस इज इन टर्मोइल एंड ऑन द वर्ज ऑफ

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में बातें गुजरे जमाने की एक प्यारी सी चाइल्ड एक्टर की, जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक बेहतरीन काम किया। उनके नाम पर दो दो नेशनल अवार्ड्स हैं, एक एक्टिंग के लिए और दूसरा कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। किन की बात कर रही हूं मैं, जरा सोचिए। अच्छा, गाना सुनाती हूं, उनके ऊपर फिल्माया, आप अंदाजा लगाइए।

गीत गाता चले इस फिल्म से गाना आपने सुना आरती मुखर्जी की आवाज में, जो कि फिल्माया गया था सारिका पर। वैसे नया नया तो सारिका को लगता ही होगा, वो बहुत ही छोटी सी थी जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और इस फिल्म में वो एकदम से बड़ी होकर नजर आई पर्दे पर। दोस्तों आज हम अभिनेत्री सारिका ठाकुर की बात करने वाले हैं, यानी कि सारिका की। सारिका स्क्रीन पर जितनी सहज नजर आती उतनी ही ज्यादा मुश्किल रही उनकी जिंदगी। ऐसा कहा जाता है कि सारिका ने एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजारी है। दोस्तों सारिका का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली में हुआ था। वो महज 5 साल की थीं जब पिता के चले जाने के बाद उन पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी। कहते हैं कि जिम्मेदारियों की वजह से सारिका अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। और भी बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।

राकेश रोशन और सारिका पर फिल्माया गया था ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। दोस्तों, फिल्म का नाम है देवता, जिसे आपने ये गाना सुना, और हम बातें कर रहे हैं सारिका की। अभिनेत्री सारिका के करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर हुई थी। उनके पहले किरदार का नाम मास्टर सूरज था। जी हाँ, कभी छोटे से लड़के कभी लड़की का किरदार वो निभाया करती थी। 1967 में दोस्तों एक फिल्म आई थी हमराज, आपको बहुत अच्छे से याद होगी ये फिल्म, और इस फिल्म में सारिका को खूब पहचान मिली। हमराज में उन्होंने अभिनेत्री विमी की बेटी का रोल किया था, जिसका नाम सारिका ही था। इसके बाद सारिका बेबी सारिका के नाम से मशहूर हो गई। प्यारी सी मुस्कान और भूरी आंखों वाली सारिका 60 के दशक में एक जानी मानी चाइल्ड एक्टर बन चुकी थी। तो हमराज फिल्म से ही ये गाना मैं आपको सुनाती हूँ।

0: इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने और ये मैंने आपको सुनाया हमराज फिल्म से. सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी. अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
2: पक्का.
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार

0: कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com।
4: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सारिका की, जिन्हें बचपन में आप बेबी सारिका के नाम से जानते थे। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया और बहुत ही प्यारी लगती थी वो, इसलिए वो हमें बचपन से लेकर अब तक याद हैं कि उन्होंने कहाँ कौन से किरदार निभाए। दोस्तों, लीड एक्टर के तौर पर सारिका की जो पहली हिंदी फिल्म थी वो थी गीत गाता चल। इसमें उन्होंने मराठी हिंदी के जाने माने अभिनेता सचिन पिलगांवकर के साथ काम किया था। फिल्म बहुत अच्छी चली और सारिका को पहचान मिली। सचिन के साथ सारिका ने कई मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया है। सचिन और सारिका की जोड़ी एक जमाने में मराठी सिनेमा के दर्शकों की पसंदीदा जोड़ी हुआ करती थी। गीत गाता चल के बाद दोनों ने कई और फिल्मों में साथ काम किया। तो इसी फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गाना आप कहीं ना जाना।

दोस्तों आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने ये गाना सुना बिल्कुल अभी, और हम बातें कर रहे हैं सारिका की। सारिका जो कि बचपन में आपको नजर आई बेबी सारिका के रूप में, बाल कलाकार के रूप में, और बड़े होने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की गीत गाता चल फिल्म से। दोस्तों सारिका ने ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया, जैसे कि क्रांति, राज तिलक, जानी दुश्मन, विधाता, रजिया सुल्तान और ये वादा रहा आदि। इतने सारे कलाकारों के साथ काम करते हुए भी सारिका अपनी छाप छोड़ ही देती थी। सारिका के करियर में कुछ ऐसी फिल्में रही हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक फिल्म थी परजानिया। ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि चर्चित फिल्म थी, और इस फिल्म के लिए सारिका को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। सारिका के साथ एक थोड़ा अजीब सा इत्तेफाक ये रहा कि उन्हें जिन जिन फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिला उन फिल्मों में उनका कोई गाना नहीं था, तो इसलिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना मैं आपको सुनाती हूँ।

आशा भोसले, दिलराज कौर और उनके साथियों की आवाज में आपने सुना सत्ते पे सत्ता फिल्म से गाना। सत्ते पे सत्ता फिल्म में शीला का किरदार निभाया था सारिका ने। वैसे दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि सारिका एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे किरदार निभाए हैं, हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं फिल्मों में। नेगेटिव किरदार भी उन्होंने निभाए हैं, पॉजिटिव भी निभाए हैं, बाल कलाकार के तौर पर भी वो नजर आई हैं। लेकिन क्या एक बात आप जानते हैं कि सारिका ने पर्दे के पीछे भी नाम कमाया है। जी हाँ, नाम कमाया, सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि नाम भी कमाया है, और नाम के साथ साथ एक अवार्ड भी उन्हें मिला है, बहुत ही शानदार अवार्ड। बताऊंगी आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले जानी दुश्मन फिल्म का ये गाना है जो मुझे आपको सुनाना है, और आपको कहीं नहीं है जाना।

मोहम्मद रफी और उनके साथ में आशा भोसले की आवाज आपने सुनी। जानी दुश्मन फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत था और मैं चाहती थी कि ये गाना आप जरूर सुने। मुझे तो ये बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये गाना बहुत अच्छा लगता होगा। दोस्तों, इस फिल्म में बिंदिया का किरदार निभाया था सारिका ने। कितनी प्यारी, कितनी मासूम लगी थी इस फिल्म में। दोस्तों, सारिका ने पर्दे के पीछे तो नाम कमाया ही है, साथ ही साथ वो एक मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं कि एक इंसान है, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। उन्होंने हर तरह के चैलेंजिंग किरदारों के साथ साथ एक ऐसा किरदार निभाया जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। शायद आपको पता हो कि एक कामयाब कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं सारिका। सारिका ने कमल हासन की चर्चित फिल्म हे राम के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे और कमाल की बात यह है कि उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। हाँ, हे राम का गाना तो मैं नहीं सुना सकती हूँ, गाना है नहीं उनके ऊपर कोई फिल्म आया हुआ, लेकिन हाँ, बड़े दिल वाला फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना सिर्फ आपके लिए।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की तीसरी तारीख दिन है बुधवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तेंजिन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री तानिंग ताको और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री आंटू कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री सांगे टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: The agency has forecast above average temperatures across most parts of the world from June to August and said El Nino conditions are likely to persist until November. The IMD has forecast hot and humid weather over parts of the northeastern region in Odisha, Konkan, Goa and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia's Kai Shing Kang and Aaron Thai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत को

0: से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि यह कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

0: समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाई। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ

0: पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड के बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे मनहर उदास की आवाज में श्री लक्ष्मी मंत्रो जाप। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।
3: लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा संपत्ति प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का सस्वर पाठ तथा श्री सूक्त की ऋचाओं से घृत होम करने का विधान वेदादि शास्त्रों में वर्णित है। विशेष रूप से आधुनिक युग में वेदादि मर्यादा से हीन मनुष्य श्रीहीन, कांतिहीन और चिंतित तथा अशांत दिखाई उनके कल्याण के लिए श्री सूक्त पूर्वक होम विधान अत्यंत लाभकारी है। प्रातःकाल खिले कमल में गुणों का आश्रय लेने वाली लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। प्रातः प्रबुद्ध कमलम आश्रयेत श्री गुणाश्रया। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय स्नानादि से निवृत्त होकर श्री सूत का सस्वर पाठ सहित होम करता है, उसके पास संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य से युक्त लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। यही श्रीदेवी मनुष्यों को चिंता और शोक भरे भवसागर से पार उतार देती है। तरति शोकम आत्मविद। श्री सूक्त उपासना से मनुष्य सांसारिक वैभव तो प्राप्त करता ही है, उसको आध्यात्मिक संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। वह आत्मविद आत्मतत्व को सहज ही जान लेता है। जो व्यक्ति 21 बार श्री सूक्त के 16 मंत्रों से श्री होम करता है, वह सांसारिक ऐश्वर्यों के साथ साथ अष्ट सिद्धि और नव निधियों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र को सस्वर पढ़ने सुनने मात्र से ही व्यक्ति को आध्यात्मिक

एवं भौतिक दोनों प्रकार की शांति प्राप्त होती है। जो मंत्र पाठ नहीं कर सकते वे मंत्र सुनकर स्वाहा कहते हुए हवन करें। मंगलवार से हवन पूर्वक श्री सूक्त का जप अत्यंत लाभकारी होता है। 72 दिनों में 125,000 विधिपूर्वक जाप करने से श्री सूक्त सिद्ध होता है। सिद्ध होकर ही मंत्र व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। ओम शांति शांति।

0: लक्ष्मी गायत्री गायत्री मंत्र के समान ही महामंत्र है। गायत्री परात पर ब्रह्म के ध्यान।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत मनहर उदास से श्री लक्ष्मी मंत्रो जाप आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम वंदना।
0: किंतु लक्ष्मी तो प्रकृत सृष्टि का साक्षात स्वरूप है। यदि संसार के ऐश्वर्य धन धान्य के अभावों के कष्टों से संघर्ष करता व्यक्ति लक्ष्मी गायत्री का जाप करता है तो वो अभावों के समुद्र को बिना प्रयास ही पार कर जाता है। लक्ष्मी गायत्री से व्यक्ति जीवन की सुविधाओं को भोग कर प्रभु की कृपा से सुखद शांति प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री सूक्त को होम पूर्वक पूर्ण करके लक्ष्मी गायत्री के जप की 11 मालाएं फेरने से मनुष्य के दुख दारिद्र्य और अभाव का विनाश होता है और परम शांति प्राप्त।

ओम प्रभु शांति एक महात्मा का अनुभूत मंत्र है। इसका जाप करने से अशांति दूर होती है और विभिन्न क्षेत्रों में अनायास ही शांति प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र से हवन करके जाप करने से तत्काल मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यदि 5 मिनट भी कोई ओम प्रभु शांति मंत्र का जप कर लेता है तो उसके 23 घंटे 55 मिनट प्रभु स्वयं संभाल लेते हैं। ओम शांति शांति।

श्रोताओं, मन्ना रुदास की इन्हीं श्री लक्ष्मी मंत्रों जाप के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जयंता हजारिका के आवाज में चंद आधुनिक आसामिया फिल्मी नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत जयंता हजारिका के आवाज में चंद आधुनिक आसामिया फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जयंता हजारिका के आवाज में चंद आधुनिक आसामिया फिल्मी नगमे। इसके साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्री का कुमारी देकी लामू से जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव विषय पर एक वार्ता।
1: ताशिदिले आप सभी को मैं डेकी लामू पीएम श्री कक्षा 11वीं विज्ञान की आकाशवाणी तवांग से प्रसारित मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वह केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व, संस्कृति और भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव। साथियों, जलवायु परिवर्तन आज किसी रिपोर्ट या सम्मेलन की बात नहीं रह गई है। यह परिवर्तन हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि गर्मियां पहले से अधिक बढ़ने लगी है, सर्दियों में बर्फबारी अनियमित हो गई है, बारिश कभी बहुत अधिक हो तो कभी बिल्कुल नहीं होती है। यह सभी परिवर्तन मानव गतिविधियों का परिणाम है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर जीवन रेखा होती है, लेकिन बढ़ती तापमान के कारण ये तेजी से पिघल रहे हैं। इससे स्रोत सूख रहे हैं, भविष्य में जल संकट बढ़ रहा है। पहाड़ों में अब ना तो बारिश समय पर होती है और ना ही बर्फबारी पेरी जैसी रही है। साथियों, अब मैं जलवायु परिवर्तन हमारी मोनपा जनजाति को कैसे प्रभावित कर रही है के विषय पर बोलना चाहूंगी। मोनपा समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीते आए हैं। हमारी संस्कृति, कृषि, पशुपालन और जीवन शैली पूरी तरह से पहाड़, मौसम और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, लेकिन आज बर्फबारी का समय बदल रहा है। जल स्रोत धीरे धीरे सूख रहे हैं, पशुपालन की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। इसके बावजूद मोनपा जनजाति की पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति संसाधनों की रक्षा, सामुदायिक जीवन और सदा जीवन आज पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। यदि हम उनके अनुभव और प्रकृति सम्मत जीवन शैली से सीख लें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ के मौसम पर निर्भर रहती है मोनपा समुदायों की पारंपरिक खेती, लेकिन अब फसल बोने का समय बदल गया है। पाला और असमय बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। चारागाह क्षेत्रों में कमी आ रही है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो युवा रोजगार की सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। इससे गांवों की जनसंख्या घटती है, पारंपरिक ज्ञान संस्कृति कमजोर होती है। समाधान सरकार या संस्थाओं तक सीमित नहीं है। हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। पेड़ लगाना और बचाना, जल स्रोतों की रक्षा करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना आदि। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, यदि तवांग के पहाड़ सुरक्षित है तो नीचे बहने वाली नदियां सुरक्षित है। यदि मोनपा संस्कृति सुरक्षित है तो प्रकृति का संतुलन सुरक्षित है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सिर्फ बातें नहीं, जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी देकी लामू से जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव विषय पर एक वार्ता।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है नीरजा फिल्म से कविता सेठ की आवाज में, बोल प्रसून जोशी के और संगीत विशाल खुराना का।

अगला नगमा सुनिए शाल मालिक होलगारे की आवाज में। दावत इश्क फिल्म के इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत से सवारा है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाजों में, बोल अन्विता दत्त के और संगीतकार विशाल शेखर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए, माय नेम इज खान फिल्म से राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाजों में। निरंजन एंगर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर एजान लॉय ने।

अगला नगमा पेश है शाहिद मालिया की आवाज में। मौसम फिल्म के इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

जब तक है जान फिल्म से भी आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा नगमा, स्वर हर्षदीप कौर के और संगीतकार एआर रहमान। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत चंद हिंदी फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है हीरो फिल्म से मोहित चौहान और प्रिया पांचाल की आवाजों में। सचिन जिगर द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है निरंजन एंगर ने।

बार बार देखो फिल्म से भी आप सुन रहे थे कुमार का लिखा नगमा, स्वर नीति मोहन और अरमान मलिक के और संगीत अमाल मलिक का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में। शिवाय फिल्म के इस गीत को लिखा है साहित कादरी ने और संगीत से सवारा है मिथुन ने।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से भी आप सुन रहे थे गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा क्लिंटन सेरियो, लॉय मेंडोसा और डोमिनिक सेरियो की आवाजों में, बोल जावेद अख्तर के और संगीतकार शंकर एजान लॉय। इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं आप आनंद लीजिए शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत पंडित हरिप्रसाद चौरासिया से बांसुरी वादन। राग है मियन की मल्हार तथा तबले पर संगत दिया है सबीर खान ने।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे मियन की मल्हार राग पर पंडित हरि प्रसाद चौरासिया से बांसुरी वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली के मानवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। केंद्रीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा शुक्रवार से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग स्थित रिवॉच परिसर में APPSC प्रारंभिक परीक्षा सुविधा कार्यक्रम का तीसरा बैच शुरू हुआ। कार्यक्रम का आयोजन रिवॉच रोइंग तथा पुणे स्थित जनन प्रबोधनी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ICMR AITS द्वारा पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में परामर्श सह हितधारक बैठक आयोजित। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स में मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस आयुक्त अनंत मित्तल ने बताया है कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: इनके लापरवाही के कारण ये हुआ है। पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। केंद्रीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा शुक्रवार से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जिले में चल रही विभिन्न आधारभूत संरचना एवं विकास परियोजनाओं का व्यापक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें विकास गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी तथा जिले के कल्याणकारी और प्रगति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। दौरे के तैयारियों के तहत लोअर सियांग जिला प्रशासन ने एक समन्वय बैठक आयोजित कर केंद्रीय मंत्री की जिले के सुचारू एवं सफल दौरे के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का अंतिम रूप दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग स्थित रिवॉच परिसर में APPSC प्रारंभिक परीक्षा सुविधा कार्यक्रम का तीसरा बैच शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन रिवॉच रोइंग तथा पुणे स्थित जनन प्रबोधनी प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवा अभ्यर्थियों को APPSC परीक्षा की तैयारियों में सहायता प्रदान करना है। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हाइब्रिड मोड पर किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ICMR AITS परियोजना दल ने पापुमपारे जिले के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में राज्य के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं समर्थकों की एक परामर्श सहित धारक बैठक आयोजित की, जिसमें राज्यभर के विभिन्न संगठनों और सेवा क्षेत्रों का प्रस्तावित करने वाले लगभग 25 मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और समर्थकों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और सहयोग तंत्र को और

0: अधिक प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजाति विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना जरूरी है।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देने का आह्वान किया है। राज्य के कोलासिब जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल में 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हमले के बाद हुई इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय और संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमेरिका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एच एस प्रणय आयरलैंड के नेहत गुएन और आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले दौर में ही हार कर बाहर हो चुके हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगा मुरुंगफांग को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कई बदलाव नहीं करेगा। नीति निर्णय शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के

0: 지디지
1: Dé,

अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या की 6:20 पर कार्यक्रम शेतोन लेरिम में सुनिए आनी थुपतेन छोजांग उमजे और साथियों से बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर सुनिए हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने में सुनिए पुश द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 4 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए अनूप जलोटा के आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक दिगारू मिश्मी नगमों का आनंद लीजिए निफालू बू की आवाज में कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। महिलाओं पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच कल दोपहर 3:30 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में सुनिए रॉकस्टार फिल्म से मोहित चौहान, जावेद अली और एआर रहमान, बरेली की बर्फी फिल्म से अर्को, केदारनाथ फिल्म से अरिजीत सिंह और अजीज कौर, दे दे प्यार दे फिल्म से अरिजीत सिंह, आशिकी 2 फिल्म से पलक मुंचल और अरिजीत सिंह, जब तक है जान फिल्म से हर्षदीप कौर, एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसूजा और सुजैन डी मेलो, राजनीति फिल्म से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा, पुष्पा द राइज फिल्म से जावेद अली और रावण फिल्म से शौकत अमानत अली के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:50 पर। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में आनंद लीजिए शेख चिन्ना मौलाना से शहनाई वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मोनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए महामहिम टुल्कू तेंजिन ग्युरमे रिम्पोछे जी से आचार्य शांति देवा द्वारा रचित बोधिसत्व के जीवन मार्ग का परिचय पर आधारित शिक्षाओं के श्रृंखला का शेष भाग कल शाम 5:00। 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम देंगदुइक समा। लेरिम सेडा शाम 6:00 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदोन लेरिम में सुनिए जांग थिम्बू एजुकेशन ब्लॉक के श्री जंपा छोगिल और साथी शिक्षक गणों से चंद बौद्ध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के 6 कक्षा की छात्री का कुमारी तंजन यांगी से एक हिंदी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण में आनंद लीजिए परिणीता फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल, सलामे इश्क फिल्म से श्रेया घोषाल, सोनू निगम, कुणाल गांजावाला, साधना सरगम और शंकर महादेवन, दिल मांगे मोर फिल्म से सोनू निगम और सुनिधि चौहान, क्रिश फिल्म से श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान, हे बेबी फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल, पीके फिल्म से श्रेया घोषाल और सोनू निगम, कभी अलविदा ना कहना फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक,

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं।

फना फिल्म से सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल, और अपने फिल्म से सोनू निगम, जयेश गांधी और जसपिंदर नरूला के आवाजों में गायक सोनू निगम द्वारा अन्य गायकों के साथ गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल शाम 7:12 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए राजी फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइश शो पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का। और आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन

0: रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रूपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, जिंदगी में जब भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझेंगे कि जो आपके साथ गलत हुआ वो होना कितना जरूरी था। नमस्कार, मैं हूँ आपके रेडियो दोस्त दर्जी डर्मा।

0: तकनीकी सहयोगी तानिंग तको के साथ हम लेकर आए हैं हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम देखते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में पहला फोन किस श्रोता से प्राप्त हुए हैं। हेलो
1: हेलो देशले मैडम
0: जशे दिले ला पिम जशला जी को देशो स्लेरम का जिसा मपुई गोनी ला
1: उमा जर्बी का आदा जिबे दुंदे पुसा मदी गुई ना जत
0: लेस लेस जर्बी को जिगमे दुंदुप सिंह यरो सम गयते नि न फुनिक जे दुछनी मे अरेला
1: ओ लेस जत मला बुना ला दो पेदा दे जे की जे कदा ना दो जे की जे कदा ओ यो तुम सब आ निशा मे जे कदा मोगा आ गो को
0: लेस ला
1: जान जत संग जे गेम दे जे कदा आ ब्लू जे क्या नोट जे जे नि ला दो
0: लेस ला लेस लेस जे पेन जशला दाता लोप ना जिना
1: চিন্তা
0: শুনে তো জুন জুলাই অগস্ট নিয়ে নাম সার মংধার রোদ মেয়রেলা মেনাজি না দেখো নাম্বার দাও এজিক পিমটিসা উৎলি রুমগা দেশ এনাশি থাকতে নাম চিটি এনাশ ফুটুশোলা তুজি ছিলা।

0: हेलो जी, नमस्कार
1: हेलो, आकाशवाणी तवांग।
0: जी। बिल्कुल, आकाशवाणी तवांग है, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बेतुनिटी स्टेट गोलाघाट आसाम से रमेश बक्सर बात कर रहा हूँ।
0: आपका बहुत स्वागत है। बताइए, आपको कौन सी गीत पेश कर सकती हूँ?
1: इम्तिहान फिल्म का एक गीत है, ही तू कहीं हार के।
0: जी, इम्तिहान फिल्म से गीत की बोल एक बार फिर बताइएगा।
1: गीत की बोल, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, जरूर पेश करेंगे। और आप के साथ और कोई है इस गीत को सुनने वाले?
1: सुनने वाले हैं हमारे साथ
0: जी
1: अमल बसुमतारी, भाईकोन मुंडा है,
0: विमल
1: बसुमतारी,
0: रमेश
1: प्रजापति, जोगेंद्र रंगी
0: जी जी
1: और बहुत साथी लोग हैं
0: जी। और आप क्या करते हैं?
1: हम तो रिटायर्ड टीचर हूँ मैं।
0: अच्छा, रिटायर्ड टीचर।
1: रिटायर के बाद हमारा रेडियो से गहरा दोस्ती हो गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है जी।
1: जैसे टाइम पास करता हूँ।
0: हाँ हाँ जी जी जी। और हमारे आकाशवाणी तवांग को आप रोज सुन पाते हैं?
1: हाँ हाँ, सुनता हूँ
0: जी जी, बहुत सुंदर।
1: गीत है SMS रिक्वेस्ट, वो भी सुनता हूँ।
0: हाँ जी, रात के 8 बजे ना?
1: 8 बजे
0: जी। तो आपका बहुत धन्यवाद हमारे आकाशवाणी तवांग से जुड़े रहने के लिए और हमारे सारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए। और क्या मैं इसी के साथ आपकी फरमाइश पेश कर सकती हूँ?
1: जी
0: जी जी, धन्यवाद।

0: हेलो नमस्कार.
1: हेलो टिशिल्ला मैडम
0: टशे दिल्ला
1: समझी शुरू लाम
0: लेसुला समझी भी गोने लाजिक एनांग रिंजन खंडुला नांग दो अरे ला
1: ओ इन इन लाम
0: लेसला समझे सिबी गोने ला
1: समझी ये फरेंग यो शिल्ला मैडम
0: लेस लेस लेस संगन जन मला नो वाला एनांग दे उच्चे
1: जन नो सुकर आमन लाम मैडम मिना थीले मनु ला
0: ओ लेस लेस इस अने देशी एनांग थी जिक समय ये नी फरेंग यो चिती जिक संयुक्त यो चनु में अरे Porang-rang te menak mesa mula di rodur, cinta cisa mengatang dia ingat rodur me orang tu ke susi na. Anak rinci kanu laut tu cik, ina si tu tinang sama cete ina shell, pidu shula, tu cik cila.
1: Oh tu je lam tu.
2: Eh, ini porang, usung tu, baksar tirang. Tapi mana dah?

दोस्तों, हमारे पास आज के इस कार्यक्रम में अब भी थोड़ी सी समय बचे हुए हैं, तो क्यों ना हम सब इस खूबसूरत सफर में आगे बढ़े जहां यादें भी सुरों में ढल जाती हैं। और अब एक ऐसी गीत का आनंद लेते हैं जो जवानी की मासूमियत और मोहब्बत की मिठास को बखूबी बयां करता है। मोहम्मद रफी साहब की दिल को छू लेने वाली आवाज में फिल्म जवा मोहब्बत का ये प्यारा नगमा आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना अपने दौर में था। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दिल को सुकून देने वाला ये बेहतरीन गीत जवा मोहब्बत, सिर्फ यही आपके अपने कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में।

जी हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार के सुबह 10 बजे हमें जरूर फोन कीजिएगा। हमारा फोन नंबर है 6033914908। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ ही अब आपके दोस्त दर्जी डोलमा को तकनीकी सहयोगी तानिंग तको के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम को संचालित एवं प्रस्तुत करता थे दर्जी ड्रेमा। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री एवं उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी के अध्यक्ष अमित शाह कल मेघालय के शिलोंग में एनईसी के 13वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय डॉनर ने बताया है कि इस अधिवेशन में क्षेत्र विकास में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गठित मुख्यमंत्रियों के उच्च स्तरीय टास्क फोर्सों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। इन योजनाओं में से राज्य और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा तथा साझा विकसित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलने की उम्मीद है। अधिवेशन में नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर एक विचार विमर्श किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र को आर्थिक विकास, संपर्क व्यवस्था, नवाचार, सतत विकास और सांस्कृतिक समृद्धि के एक सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने में दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करना है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू आज शिलोंग पहुंचे हैं, जहां वे उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण अधिवेशन तथा नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में भी बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मर्केटा शुक्रवार से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के दो दिवसीय

आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जिले में चल रही विभिन्न आधारभूत संरचना एवं विकास परियोजनाओं का व्यापक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें विकास गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी तथा जिले के कल्याणकारी एवं प्रगति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। दौरे की तैयारियों के तहत लोअर सियांग जिला प्रशासन ने एक समन्वय बैठक आयोजित कर केंद्रीय मंत्री के जिले के सुचारू एवं सफल दौरे के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। केंद्रीय

0: के दौरान दल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा हाल ही में घोषित रेशम उत्पादन से संबंधित 5 प्रमुख पहलों पर विस्तृत प्रस्तुति प्रदान की। टीम ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर संभावनाओं और क्रियान्वयन रणनीतियों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय निरीक्षण भी किया। ईटानगर नगर निगम ने आज निर्जुली के वार्ड संख्या 19 में एक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई स्थानीय निवासियों द्वारा सार्वजनिक असुविधा, यातायात बाधा और कचरा प्रबंधन में आ रही रुकावटों संबंधी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। अभियान को अरुणाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 2019 की धारा 247 के तहत संचालित किया गया। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त कोदालासा ने कहा है कि सार्वजनिक सुविधा, स्वच्छता तथा सुव्यवस्थित शहरी प्रशासन की बहाली के लिए यह अभियान अत्यंत आवश्यक है। पासीघाट स्थित सियांग गेस्ट हाउस में आयोजित 2 दिवसीय जीएसटी जागरूकता सह व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। सीजीएसटी एवं केंद्र उत्पाद शुल्क पासीघाट रेंज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में करदाताओं, व्यापारियों, व्यवसाय मालिकों, उद्यमियों, कर सलाहकारों तथा स्थानीय व्यवहारिक समुदाय के सदस्यों सहित लगभग 50 से 60 हितधारकों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के विभिन्न पहलुओं जैसे जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना, चालान प्रणाली, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, अभिलेखकों का रखरखाव, जीएसटी पोर्टल की प्रणाली अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं तथा जीएसटी के अंतर्गत अपराधों और दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान की गई। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की एक रणनीतिक बैठक जिला मुख्यालय जीरो में आयोजित की गई। लोअर सुबनसिरी उपायुक्त ओले परमे के नेतृत्व में हुई इस बैठक में स्थानीय जल अवसंरचना को सुदृढ़ करने, विशेषीकृत जमीनी तकनीकी टीमों के गठन तथा ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ बनाए रखने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में संस्थागत ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण स्वच्छता की प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार व्यापक कार्यसूची पर चर्चा की गई। कई पानी और जिला प्रशासन ने आज अचुली स्थित जिला सचिवालय भवन परिसर तथा मंडलीय आयुक्त वेस्ट के मुख्य द्वार के आसपास सामूहिक कॉस्मोस पुष्पारोपण अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने स्वच्छ, हरित एवं सुंदर सार्वजनिक स्थलों के निर्माण में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों में समुदाय की निरंतर भागीदारी का आह्वान भी किया। और दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 40 अन्य लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया है कि 8 दशमलव दमकल वाहनों की सहायता से आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Union Home Minister and Chairman of the Northeastern Council, Amit Shah, will chair the NEC's 73rd plenary session in Shillong, Meghalaya tomorrow. The Ministry of Development of Northeast Region said that the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. The deliberations are expected to facilitate coordinated action among states and stakeholders for achieving shared developmental goals. It will further deliberate on the Northeast Vision Plan 2047, which seeks to provide a long-term roadmap for transforming the Northeastern region into a vibrant hub of economic growth, connectivity, innovation, sustainability and cultural prosperity by 2047. Meanwhile, Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu reached Shillong today to attend the 73rd plenary session of the Northeastern Council and a meeting of the Northeastern Space Applications Centre. 21 people lost their lives and 40 others were rescued after a fire broke out at a hotel in Malviya Nagar, Delhi this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said that the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. He said through the coordinated efforts of police, fire services and other emergency responders, more than 40 persons have been rescued and shifted to nearby hospitals for medical treatment. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives due to a fire incident. In a social media post, Mr. Modi said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced that an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of kin of each deceased. The injured will be given 50,000 rupees. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल्स।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:56 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। कौमी तराने के अंतर्गत पूज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का एक देशभक्ति नगमा।

अरिजीत सिंह के इस देशभक्ति नगमे के साथ ही कार्यक्रम कौमी तराने अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवकर, निर्मला नवकर और विशाल नवकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष मुरेकर ने। आप सभी के फरमाइश पे पेश हैं 10 लाख फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया गीत, बोल प्रेम धवन के और संगीत रवि का।

0: लग जागले दिलजुबा।
1: अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है वाडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा से साजन फिल्म का नगमा। इस नगमे को लिखा है समीर ने, गाया एसपी बाला सुब्रमण्यम ने और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह के फरमाइश पर सुनिए यकीन फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया नगमा। शंकर जयकिशन द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए वेस्ट जलालाबाद से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा के फरमाइश पर पागल कही का फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया गीत। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है पद्म टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कौशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है आनंद फिल्म से मना डे का गाया गीत, बोल योगेश के और संगीतकार सलील चौधरी।

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है मंडरेलिंग तवांग से सोनम नुरबू, नीमा सोनम, केजांग सरिंग राजा और तिनजिन ज्योपा ने तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नगमा, गीतकार समीर, आवाज कुमार सानू का और संगीतकार नदीम श्रवण।

गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स डबल्स में रोहन कपूर तथा ऋत्विका शिवानी गद्दे ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आर प्रज्ञानानंदा ने मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत दर्ज की। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को और महिला टीम ने सिंगापुर को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश के युवाओं से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने आज चीन के वेंग होंगयांग को 8-21, 22-20, 21-15 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ी ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पोहान को 21-14, 21-14 से मात दी। एचएस प्रणय को आयरलैंड नहत गुएन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशियाई जोड़ी कांग काई जिंग और आरोन ताई के खिलाफ पहले ही सेट

0: कंधे की चोट के कारण बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा को जापान की नोजोमी ओकुहारा से 21-15, 21-14 से हार का सामना करना पड़ा। सिंगापुर ओपन जीतने के बाद भारतीय प्रशंसकों को सात्विक चिराग से उम्मीद थी, लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए और अब सबकी निगाहें पीवी सिंधु पर होगी, जहां वो वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में कल मुकाबला करती नजर आएंगी। और अब रुख कर लेते हैं शतरंज की ओर। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहले भारतीय चैंपियन बनने की अपनी दावेदारी को मजबूत किया।
1: प्रज्ञानंदा इस वर्ष क्लासिकल बाजी में कार्लसन को दो बार हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस एलीट डबल राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में उन्होंने पहले भी कार्लसन को क्लासिकल बाजी में हराया था। इस जीत से 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा के 12 अंक हो गए हैं और वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ इस हार से कार्लसन की 8वीं बार नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। अब केवल 2 राउंड रह गए हैं और ऐसे में मौजूदा चैंपियन कार्लसन के लिए खिताब बचाना आसान नहीं होगा। कार्लसन का यह अभियान उथल पुथल भरा रहा है, जिसमें उन्हें 4 बार क्लासिकल बाजी में हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा 9वें दौर में काले मुहरों से भारत के ही गुकेश से खेलेंगे। इस बीच अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहे अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आर्मागेडन टाई ब्रेक में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया, जिससे उनके अंक 14 हो गए हैं। फ्रांस के फिरोजा ने क्लासिकल मुकाबले में गुकेश को हराकर 13 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। विश्व चैंपियन डी गुकेश की खिताब जीतने की उम्मीदें 8वें दौर में फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा से एक और करारी हार के बाद खत्म हो गयी। वे 8 अंकों के साथ तालिका में सबसे निचले पायदान पर आ गए हैं। 2024 में विश्व चैंपियन बनने के बाद गुकेश का खराब प्रदर्शन जारी है। इस टूर्नामेंट में गुकेश की क्लासिकल बाजी में ये तीसरी हार थी। इससे उनकी इस साल के आखिर में उज्बेकिस्तान के चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप के अपने खिताब का बचाव करने की तैयारी को भी झटका लगा है। उधर महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बिबिसारा असाउबायोवा ने दिव्या देशमुख को क्लासिकल बाजी में हरा कर खिताब की दौड़ में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीन की झू जिनर ने भी क्लासिकल में जीत हासिल की। उन्होंने मौजूदा महिला विश्व चैंपियन जू वेंजुन को हराकर 10 अंक के साथ दिव्या की बराबरी कर ली है। मौजूदा चैंपियन अन्ना मुजिचुक और कोनेरू हम्पी ने अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ किया। इसके बाद आर्मागेडन टाई ब्रेक भी ड्रॉ रहने से हम्पी को बोनस अंक मिल गया, क्योंकि वे काले मोहरों से खेल रही थी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां पुरुष और महिला वर्ग दोनों में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला अंडर 18 एशिया कप हॉकी के पुल ए के अंतिम मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराया। भारत प्रतियोगिता में पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है।
2: भारत ने सिंगापुर के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया। भारत के कम से कम 10 खिलाड़ियों ने गोल किए, जिनमें नौशीन नाज सबसे आगे रहीं। उन्होंने 8वें, 13वें, 17वें, 18वें, 40वें, 92वें, 98वें मिनट में गोल दागकर कुल 7 गोल किए। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही गीताश्री नामी ने 5 गोल किए, जबकि कप्तान स्वीटी कुजुर ने 4 गोल का योगदान दिया। प्रियंका मिज ने 22वें, 37वें, 53वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक बनाई। दिया 27वें, नैन्सी सरोहा 36वें, श्रुति कुमारी 40वें, पुष्पा मांझी 47वें, रश्मीन कौर 47वें और संदीपा कुमारी ने 91वें मिनट में गोल करके अपना अहम योगदान दिया। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। कप्तान स्वीटी ने दूसरे ही मिनट में पहला गोल दागा। नौशीन ने 8वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद गीताश्री और नौशीन ने 13वें मिनट में एक एक गोल करके भारत की पकड़ मजबूत कर दी। भारतीय टीम ने इसके बाद भी गोल करना जारी रखा और अपनी सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की। पूल ए में भारत ने मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर को हराकर 9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूल ए मैच के मुकाबले में आज भारत ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराया। भारत ने कजाकिस्तान, कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत के साथ अपने पूल मैच खत्म किए, जबकि मेजबान जापान से उसे हार का सामना करना पड़ा। इससे टीम को 4 मैच में 9 अंक

0: मिले, भारत शुक्रवार को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। रुख कर लेते हैं प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स में दुनिया की नंबर एक और चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता आर्याना सबालेंका आज क्वार्टर फाइनल में डायना स्राइडर के खिलाफ 3-6, 7-5, 6-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अलेक्जेंडर ने कल राफेल जोडर को 7-6, 6-1, 6-3 से हराया। सेमीफाइनल में ज्वेरेव का मुकाबला मेंसिक से होगा। आइए जानते हैं क्वार्टर फाइनल कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
1: पिछले साल फाइनल में पहुंचे ज्वेरेव को कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर पहले सेट में 19 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने कड़ी टक्कर दी। ज्वेरेव ने 2-5 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और 2 घंटे 17 मिनट तक चले मुकाबले को अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में और इस सीजन में क्ले कोर्ट पर 19 जीत के साथ सबसे आगे रहने के बावजूद 19 वर्षीय स्पेनिश ने पहले सेट में सर्व तोड़कर 5-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन ज्वेरेव ने अगले 6 में से 5 गेम जीतकर मैच को टाई ब्रेक तक पहुंचा दिया। इसके बाद ज्वेरेव तेजी से 3-3 की बराबरी पर पहुंचे और फिर लगातार 4 पॉइंट्स जीतकर सेट अपने नाम कर लिया। वहां से ज्वेरेव पूरी तरह हावी हो गए। अपनी पहली सर्व पर 71% पॉइंट्स जीतकर और जोरदार फोरहैंड लगाते हुए उन्होंने दूसरे सेट में 1-1 की बराबरी से लगातार 7 गेम जीते और 2 सेट की बढ़त के साथ मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस साल ज्वेरेव ने यहां 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 सेट गवाया है और यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो ज्वेरेव पहले ग्रैंड स्लैम को अपने नाम करने के प्रबल दावेदार हैं। उधर भारत के एन श्रीराम बालाजी और ब्राजील के उनके जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन से 3-6, 4-6 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स के।
0: एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह 20 और 21 जून को चीन के सांग्यू में भारत की 29 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय टीम 6 रिले स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी। एशियाई रिले चैंपियनशिप का तीसरा सत्र चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: होने वाली एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा की जाएगी। प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले तथा महिलाओं की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय टीम मिक्स्ड 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेगी। भारतीय टीम में पुरुषों के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में तीर्थेश पी शेट्टी, अविनाश कुमार, सेतु मिश्रा, निहाल विलियम, एस संतोष, रिंस जोसेफ, सूरज अलगर राजा, मोहित कुमार, बरात श्रीधर हिस्सा लेंगे। वहीं 4x100 मीटर और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में अनिमेश कुजूर, गुरिंदर वीर सिंह, हर्ष संतोष राउत, प्रणव प्रमोद गौरव, राहुल कुमार, गणेश कुमार, सेंथिल कुमार, तमिल राजू प्रतिस्पर्धा करेंगे। जबकि महिलाओं के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में रशदीप कौर, पुअम्मा एमआर, अंसा बाबू, विजय कुमारी जी के, सलोनी नागर, नीरू पाठक, सुभा वी, गौरी नंदना चुनौती पेश करेंगी। और 4x100 मीटर मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में नित्या गंधे, तमन्ना, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवंकर, अभिनया राजराजन दमखम दिखाएंगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की युवा पीढ़ी से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा, आज देश की युवा शक्ति से साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।
3: मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूं, साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
0: डॉक्टर मांडविया ने साइकिलिंग को पर्यावरण संरक्षण का सबसे टिकाऊ माध्यम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का भी जिक्र किया।
3: जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे,

0: उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। आज ग्लोबल चैलेंजेस के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान बनकर सामने आती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को संडे ऑन साइकिल जैसे अभियानों ने नई गति दी है। देश भर के लाखों युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं।
1: और अब बात क्रिकेट की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी टीम महिला T20 विश्व कप में अपनी अंतिम 11 को लेकर काफी स्पष्ट है और वे इससे पहले दो अभ्यास मैच का उपयोग कुछ और संयोजन आजमाने तथा राधा यादव और भारती फुलमाली जैसे खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए करेंगी। भारत महिला T20 विश्व कप पहला खिताब जीतने के लंबे इंतजार को खत्म करने की उम्मीद से इंग्लैंड पहुंचा है, लेकिन वे मेजबान इंग्लैंड से 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2-1 से हार गया, जिससे ICC के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से पहले उनकी तैयारियों को झटका लगा। स्मृति मानधना ने तीसरी T20 के बाद कहा कि इंग्लैंड में सीरीज खेलना जहां हमें विश्व कप खेलना है तैयारियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। विश्व कप में सलामी बल्लेबाजों की भूमिका बेहद अहम होगी।
2: Coming early and playing a series in England, going to play a World Cup, definitely in terms of the preparations, definitely extremely good to do that. But yeah, again, taking back, definitely I think me and Shefali both have a huge role to play going forward, and we'll take it in our stride. Again, with our bowling, again, we'll go back to the drawing board, see which options can be better. We did that before this series, maybe we can go back again, and now I think we know that these conditions, what balls to be bowled. I think those 2-3 things, I mean, I'm sure that it's going to help a lot.
1: भारत आगामी विश्व कप में अपना पहला मैच 14 जून को बर्मिंघम में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
4: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
3: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी

0: क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।

0: करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, धान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा

0: घोषणा की है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है।

0: निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund
4: A self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway

0: attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The Intermeteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang, 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritwik Agarwal defeated Chinese Taipei's Yang Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। चलिए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर 3:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच, साप्ताहिक मोहनपा कार्यक्रम देंगद्विक समा कल शाम 5:35 पर, कल शाम 7:12 पर फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत रात्रि 8:00। जी हां श्रोताओं, तो ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2:00 अंग्रेजी में समाचार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री तंजन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री तानिंग ताको और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री अंटू कुमार दास के साथ मैं हूं हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं अब हमें